0: मार मैं पाचो
1: इटी विन्यो और रेडियो इटी विन्यो इबी इबी काय और रेडियो के कैन और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: टीम पॉइंट ब्लैंक म्यूजिक
3: इट्स बॉय ऑन द मशीन
2: मी एपी राफेल मगेजे बासबास पापा another one.

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो यूम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो